0: हिंदुस्तानी भक्ति संगीत के कार्यक्रम के तहत अभी आप श्यामा संगीत सुन रहे थे। कलाकार थी सुदेशना गंगोपाध्याय। हिंदुस्तानी भक्ति संगीत के कार्यक्रम को जारी रखते हुए लीजिए अभी आपके सामने पुनः प्रस्तुत है श्यामा संगीत। कलाकार हैं अशोक कुमार सात्रा। तो लीजिए प्रस्तुत है अशोक कुमार सात्रा से श्यामा संगीत।
1: यू वर लिसनिंग टू श्यामा संगीत। आवर आर्टिस्ट वॉज सुदेशना गंगोपाध्याय। This is Ragam 24/7 on DTH, anytime Indian music. We conclude the program this evening with a Shyama Sangeet by our artist Ashok Kumar Shatra. Listen now to Shyama Sangeet.

0: के तहत अभी आप श्यामा संगीत सुन रहे थे। कलाकार थे अशोक कुमार सांतरा। ये आकाशवाणी कोलकाता केंद्र की भेंट थी। ये है रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी भक्ति संगीत।
1: यू वर लिस्निंग टू श्यामा संगीत। आवर आर्टिस्ट वॉज अशोक कुमार सांतरा। With that, we come to the end of this evening's program of Devotional Songs. This program was earlier recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam 24/7 on DTH, anytime, Indian music.

Gain, da, da, gain, da, da, gain, da, da.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं राग नट भैरव में संतूर वादन. आज के कलाकार हैं पंडित तरुण भट्टाचार्य. आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं हिंडल मजुमदार. तो आइए सुनते हैं राग नट भैरव में संतूर वादन. कलाकार पंडित तरुण भट्टाचार्य.
2: This is Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music. This morning we present Hindustani Instrumental Recitals. Listen to a Santoor recital in the Rag Nat Bhairo. Our artist is Pandit Tarun Bhattacharya. Accompanying him on the tabla is Hindol Bonjumdar. Listen to a Santoor recital in the Rag Nat Bhairo. Our artist is Pandit Tarun Bhattacharya. Accompanying him on the tabla is Hindol Mujumdar. Listen now to the rag Nat Bhairo on the Santoor. Our artist, Pandit Tarun Bhattacharya.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग नट भैरव में संतूर वादन सुन रहे थे। आज के कलाकार थे पंडित तरुण भट्टाचार्य। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे हिंडल मजुमदार। ये है रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। कार्यक्रम को जारी रखते हुए हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं रूपक ताल में तबला वादन। आज के कलाकार हैं पंडित आनंद गोपाल बंद्योपाध्याय। आज आपके साथ हारमोनियम प्रसाद दे रहे हैं देवाशीष अधिकारी। तो लीजिए प्रस्तुत है रूपक ताल में तबला वादन, कलाकार पंडित आनंद गोपाल बंद्योपाध्याय।
1: You were listening to a Santoor recital in the rag Nat Bhairo. Our artist was Pandit Tarun Bhattacharya. Accompanying him on the tabla was Hindol Mujumdar. This is Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music. Continuing the concert, we now present a tabla recital. Listen to the tabla in Rupak Tal. Our artist is Pandit Anand Gopal Bondopadhyay. Accompanying him on the harmonium is Debashish Adhikari. Listen to Rupak Tal on the tabla. Our artist, Pandit Anand Gopal Bondopadhyay.

এটা তিনবার, যাকে চক্রধার তক্রমুগুর বলি আমরা।

हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप रूपक ताल में तबला वादन सुन रहे थे। आज एक कलाकार थे पंडित आनंद गोपाल बंदोपाध्याय। आज आपके साथ हारमोनियम प्रसाद दे रहे थे देवाशीष अधिकारी। ये हमारे

0: आकाशवाणी के कोलकाता केंद्र की भेंट थी। रागम 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: यू वर लिसनिंग टू अ तबला रिसाइटल इन रूपक ताल। आवर आर्टिस्ट वाज पंडित आनंद गोपाल बंदोपाध्याय। Accompanying him on the harmonium was Devashish Adhikari. This program was earlier recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music.

தக்கட்டத்தும்

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: श्रोताओ नमस्कार, आपने ट्यून किया है रागम 24/7 DTH चैनल। कार्यक्रम में आपका स्वागत। सुनते हैं सारंगी वादन। कलाकार है पंडित राम नारायण। प्रारंभ में आपने सारंगी पर प्रस्तुत किया राग मारुबिहाग। सुनते हैं विलंबी और द्रुतगत तीन ताल में निबद्ध है।

श्रोताओ, अभी आपने सुना सारंगी पर राग मारू बिहा। कलाकार थे पंडित राम नारायण। और अब कार्यक्रम को जारी रखते हुए सुनते हैं सारंगी पर राग गुजरी तोड़ी, कलाकार पंडित राम नारायण। विलंबित और द्रुतगत तीन ताल में निबद्ध है। आपके साथ तबले पर है सुरेश तळवलकर।

श्रोताओ, अभी आपने सारंगी पर राग गुजरी तोड़ी। कलाकार थे पंडित राम नारायण। आपके साथ तबले पर थे सुरेश तळवलकर। आज के सारंगी वादन के कार्यक्रम में प्रारंभ में आप सुन रहे थे राग मारुभिया और अंत में आपने सुना राग गुजरी तोड़ी। कलाकार थे पंडित राम नारायण। ये आकाशवाणी पुणे केंद्र की मिति थी रागम हर पल हर समय आपके साथ।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है पंडित मधुप मुद्गल का गाया राग भटियार. विलक्त ख्याल एक ताल में निबद्ध है. बोल हैं कल नाही पावे और द्रुत ख्याल तीन ताल में निबद्ध है. बोल हैं दिन गए बीत सुख के. तबले पर आपकी संगति की है प्रसून चैटर्जी ने और हारमोनियम पर समरजीत राय ने.
2: दिस इज द रागम चैनल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो. वी नाउ प्रेजेंट फॉर यू अ वोकल रिसाइटल बाय पंडित मधुप मुद्गल. ही फर्स्ट प्रेजेंट्स राग भटियार इन विच ही विल प्रेजेंट अ बड़ा ख्याल set to vilambit ektal. The lyrics are kala nahi pave. This will be followed by a chhota khayal set to drut teen tal. The lyrics are din gaye beet sukh ke. He is accompanied on the tabla by Shri Prasoon Chatterjee and on the harmonium by Shri Sajit Roy.

0: अभी आप पंडित मधुप मुद्गल का गाया राग भटियार सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी प्रसून चटर्जी ने और हारमोनियम पर समरजीत राय ने।
1: दैट वॉज राग भटियार संग बाय पंडित मधुप मुद्गल।
0: और लीजिए अब सुनिए पंडित मधुप मुद्गल का गाया राग बिलास खानी तोड़ी। विलंबित ख्याल तीन ताल में निबद्ध है, बोल हैं नीके घुंघरिया, और तीन ताल में निबद्ध द्रुत ख्याल के बोल हैं नीके नीके शोभा देख। तबले पर आपकी संगति की है प्रसून चटर्जी ने और हारमोनियम पर समरजीत राय।

0: अभी आप पंडित मधुप मुद्गल का गाया राग बिलास खानी तोड़ी सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी प्रसून चैटर्जी ने और हारमोनियम पर समरजीत राय ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: विद राग बिलास खानी तोड़ी वी कम टू द एंड ऑफ द वोकल रिसाइटल बाय पंडित मधुप मुद्गल। ही वॉज अकम्पनीड ऑन द तबला बाय श्री प्रसून चैटर्जी एंड ऑन द हारमोनियम बाय श्री समरजीत रॉय। दिस प्रोग्राम वॉज अ प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: श्रोताओं नमस्कार, रागम 24/7 DTH चैनल पर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। कार्यक्रम के प्रारंभ में सुनते हैं उस्ताद अमीर हुसैन खां का तबला वादन, ताल एक ताल, साथ संगत है सारंगी पर मधुकर खाडिलकर, वायलिन पर पी शामन्ना। आइए सुनते हैं उस्ताद अमीर हुसैन खां का तबला वादन।

अभी आपने उस्ताद अमीर हुसैन खां का तबला वादन सुना, आइए सुनते हैं उस्ताद अमीर हुसैन खां का तबला वादन ताल रूपक। सात संगत है सारंगी पर मधुकर खडिलकर, वॉयलिन पर पी शामन्ना। आइए सुनते हैं उस्ताद अमीर हुसैन खां का तबले पर बजाया ताल रूपक।

अभी आपने उस्ताद अमीर हुसैन खां का तबला वादन सुना। साथ संगत थी सारंगी पर मधुकर खाड़ीलकर, वॉयलिन पर पी शामन्ना। कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब सुनते हैं अनुराधा पॉल का तबला वादन ताल झपताल। साथ संगत है हारमोनियम पर अप्पा जलगांवकर। आइए सुनते हैं अनुराधा पॉल का तबला वादन

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग जोग पर ख्याल सुन रहे थे। कलाकार थे पंडित संदीपन समाजपति। आपके साथ तबले पर संगीत है सौमेन नंदी और हारमोनियम संगीत है सनातन गोस्वामी। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम को जारी रखते हुए लीजिए प्रस्तुत है राग गोरख कल्याण पर गिटार वादन। कलाकार है सपन मजुमदार। आपके साथ तबले पर है सुजीत कुमार दास। लीजिए प्रस्तुत है राग गोरख कल्याण पर गिटार वादन। कलाकार है सपन मजुमदार।
1: You were listening to Khayal in the Raag Jog. Our artist was Pandit Sandipan Samajpati. Accompanying our artist on the tabla was Shomen Nundi and on the harmonium was Sanatan Goswami. This is Raagam 24/7 on DTH Anytime Indian Music. Continuing the concert, we now present a guitar recital. Listen to a guitar recital in the Raag Gorakh Kalyan. Our artist is Shopon Mojumdar. Accompanying our artist on the tabla is Sujit Kumar Das. Listen now to the guitar in the Raag Gorakh Kalyan. Our artist, Shopon Mojumdar.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग गोरख कल्याण पर गिटार वादन सुन रहे थे। कलाकार थे सपन मजुमदार, आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे सुजीत कुमार दास। ये आकाशवाणी कोलकाता केंद्र की भेंट थी। ये है रागम, 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: यू वर लिसनिंग टू अ गिटार रिसाइटल इन द राग गोरख कल्याण। आवर आर्टिस्ट वॉज सपन मजुमदार। Accompanying our artist on the tabla was Sujit Kumar Das. This program was earlier recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam 24/7 on DTH, anytime Indian music.

0: In tonight's Ravivasriya Akhil Bharatiya Sangeet Sabha, we bring you sitar recital by Sumit Singh Padam.
1: Sumit ko sangeet ke prati prem aur nipunta apni teen peedhiyon purani parivarik parampara se virasat mein mili hai. Aakashvani ke graded kalakar unke dada Shri Sohan Singh Padam ek utkrisht sangeetkar hone ke saath saath tantu vadye yantron ke सिद्धस्थ कारीगर भी थे. उनके पिता श्री जसवीर सिंह पदम, जो सितार और तबला वादन के दिग्गज हैं, उनके प्रथम गुरु बने.
0: Along with learning from his father, Sumit is learning sitar under Guru Shishya Parampara from Pandit Dr. Harvinder Kumar Sharma, a top grid artist of Akashvani and an acclaimed sitarist, carrying the generations old legacy of his guru. उस्ताद विलायत खान साहिब ऑफ इमदाद खानी घराना.
1: आकाशवाणी के ए ग्रेड कलाकार सुमित लंबे समय से भारतीय शास्त्रीय संगीत का जादू बिखेर रहे हैं और देश भर के प्रमुख संगीत समारोहों में अपनी प्रस्तुतियों के कारण उन्हें काफी प्रसिद्धि भी मिली है.
0: ही ऑल्सो हैज न्यूमरस अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स एडेड टू हिज नेम, विच इंक्लूड संगीत रत्न सम्मान, कला निधि सम्मान, स्वर साधक सम्मान एंड राष्ट्रीय कला गौरव सम्मान.
1: आज रात की रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में सुमित सिंह पदम के साथ तबले पर संगत कर रहे हैं मधुरेश भट्ट. बनारस घराने से ताल्लुक रखने वाले मधुरेश भट्ट वर्तमान पीढ़ी के सबसे प्रतिभाशाली और बहुमुखी तबला वादकों में से एक हैं. वह अपने पिता स्वर्गीय श्री सुरेंद्र भट्ट के शिष्य हैं.
0: ही पोजेसेस स्पेशल एबिलिटीज इन फ्यूजन, जुगलबंदी एंड ताल कचहरी. हिज परफॉर्मेंसेस एज अ सोलो आर्टिस्ट एंड एज एन एकॉम्पनिस्ट हैज वन एडमिरेशन, एप्रिसिएशन एंड रिस्पेक्ट फ्रॉम द क्लासिकल म्यूजिक वर्ल्ड. एन ए ग्रेड आर्टिस्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो, ही इज अ मेंबर ऑफ ICCR's reference panel of artists.
1: आज के कार्यक्रम में सुमित सिंह पदम अपने वादन की शुरुआत राग रागेश्वरी से कर रहे हैं, जिसमें आलाप, जोड़ आलाप और जोड़ झाला के बाद विलंबत गत तीन ताल में, मध्य लय गत मत ताल में और अंत में तीन ताल में द्रुत गत पेश की जाएगी.
0: इन टुनाइट्स कॉन्सर्ट Sumit Singh Padam begins his recital with Rag Rageshwari, wherein Alap is followed by Jod Alap, Jod Jhala, and then Vilambit Gat in Teen Taal, Madhyalay Gat in Mat Taal, and Drut Gat is in Teen Taal.

0: यह था राग रागेश्वरी। सुमित सिंह पदम अब प्रस्तुत करेंगे राग तेज। आलाप के बाद तीन ताल में मध्य लय और द्रुतगत प्रस्तुत की जाएगी।
1: That was राग रागेश्वरी। सुमित सिंह पदम विल नाउ प्रेजेंट राग देस। आलाप इज फॉलोड बाय मध्य लय गत एंड द्रुतगत इन तीन ताल।

0: यह था सुमित सिंह पदम द्वारा प्रस्तुत राग देस। तबले पर उनके साथ संगत की थी श्री मधुरेश भट्ट ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी जालंधर की प्रस्तुति थी।
1: That was राग देस presented by सुमित सिंह पदम। He was accompanied on tabla by मधुरेश भट्ट। This program was a presentation of आकाशवाणी जालंधर।

आप सुन रहे हैं ख्याल गायन, कलाकार हैं सुरेश शंकर अवस्थी। यू आर लिसनिंग हिंदुस्तानी वोकल रिसाइटल बाय सुरेंद्र शंकर अवस्थी। ये है रागम पर हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब आप सुनेंगे सुरेंद्र शंकर अवस्थी से राग छाया नट। एक ताल में निबद्ध विलंबित ख्याल के बोल हैं आज बधावा गाओ। द्रुत ख्याल तीन ताल में निबद्ध है जिसके बोल हैं

कलाकार थे सुरेंद्र शंकर अवस्थी, संगत कलाकार थे तबले पर यदुनंदन गोस्वामी और सारंगी पर समत खां। हर पल हर समय रागम के लिए ये थी आकाशवाणी भोपाल केंद्र की भेंट। यू आर लिसनिंग टू हिंदुस्तानी वोकल रिसाइटल बाय सुरेंद्र शंकर अवस्थी। द अकंपनीमेंट वॉज प्रोवाइडेड बाय यदुनंदन गोस्वामी ऑन द तबला एंड समत खां ऑन द सारंगी। दिस प्रोग्राम वॉज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ऑल इंडिया रेडियो भोपाल फॉर रागम 24/7 एंड एक्सक्लूसिव इंडियन क्लासिकल म्यूजिक चैनल।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत आइए सुनते हैं श्री रामाश्रय झा का ख्याल गायन. आइए इनसे सुनते हैं राग देवगिरी विलावल. विलंबित रचना एक ताल में निबद्ध है जिनके बोल हैं ए बना ब्याहन आया, और द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है जिनके बोल हैं दिन गिन दे रे बमना. तबला संगत की है पंकज कुमार श्रीवास्तव ने, और हारमोनियम पर श्री शमशाद अहमद खान ने.

देवगिरी विलावल। और आइए अब सुनते हैं राग अरुण मल्हार। विलंबित रचना धीमा तीन ताल में निबद्ध है, जिनके बोल हैं कह न गए सैया। द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है, जिनके बोल हैं बैरन भई रुत बरखा एरी सखी। कलाकार हैं श्री रामाश्रय झा।

ये था राग अरुण मल्हार। कार्यक्रम को जारी रखते हुए आइए अब सुनते हैं राग झांझ मल्हार। विलंबित रचना मध्य लय तीन ताल में निबद्ध है, जिनके बोल हैं पठाई न पतिया पियरवा। कलाकार हैं श्री रामेश्वर झा। आपके साथ तबले पर संगत की है पंकज कुमार श्रीवास्तव ने और हारमोनियम पर शमशाद अहमद खान ने।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामाश्रय झा का गाया राग झांझ मल्हार। आपके साथ तबले पर संगत की थी पंकज कुमार श्रीवास्तव ने और हारमोनियम पर श्री शमशाद अहमद खान ने। रागम 24 घंटे सातों दिन DTH अनवरत भारतीय संगीत के अंतर्गत आप तक पहुंचा आकाशवाणी लखनऊ के सौजन्य से।

0: This is Ragam 24 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है वरुण कुमार पाल का हवाइन गिटार पर बजाया नट भैरव. विलंबित गत और द्रुत गत तीन तालमनिबद्ध है. तबले पर आपकी संगति की है नवाब अली ने.
2: This is a Ragam Channel of All India Radio. We now present Hawaiian guitar recital by Barun Kumar Pal. First listen to rag Nad Bhairav. The alap is followed by Vilambit Gat and Drut Gat is set to Teen Tal. He is accompanied by Nawab Ali on tabla.

0: अभी आप वरुण कुमार पाल का हवाइन गिटार पर बजाया राग नट भैरव सुन रहे थे, और लीजिए अब सुनिए राग बैरागी में आलाप। मध्यलय और द्रुतगत तीन ताल में निबद्ध है।
1: यू आर लिसनिंग टू हवाइन गिटार रिसाइटल इन राग नट भैरव बाय वरुण कुमार पाल। नाउ लिसन टू राग बैरागी। द आलाप इज फॉलोड बाय मध्यलय गत एंड द्रुतगत इज सेट टू तीन ताल।

0: अभी आप वरुण कुमार पाल का हवाईन गिटार पर बजाया राग बैरागी सुन रहे थे। तबले पर आपकी सीखी थी नवाब अली ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: यू वर लिसनिंग टू हवाईन गिटार रिसाइटल इन राग बैरागी बाय वरुण कुमार पाल। ही वाज अकॉम्पनीड बाय नवाब अली ऑन तबला। दिस प्रोग्राम इज द प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: यह रागम सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी भक्ति संगीत. हिंदुस्तानी भक्ति संगीत के तहत लीजिए भी प्रस्तुत है एक भजन. कलाकार हैं ऐश्वर्या पांजा. तो लीजिए प्रस्तुत है ऐश्वर्या पांजा से भजन.
2: This is Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music. We present devotional songs. We begin the program with Bhajan. Listen to Bhajan by our artist Aishwarya Pragya. You are listening to Bhajan. Our artist is Aishwarya Pragya.

0: हिंदुस्तानी भक्ति संगीत के तहत अभी आप ऐश्वर्या पांजा से भजन सुन रहे थे। हिंदुस्तानी भक्ति संगीत कार्यक्रम को जारी रखते हुए लीजिए प्रस्तुत है एक और भजन। कलाकार हैं संगीता दत्ता। तो लीजिए प्रस्तुत है संगीता दत्ता से भजन।
1: यू आर लिस्निंग टू भजन। आवर आर्टिस्ट वॉज ऐश्वर्या प्रज्ञा। दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक। वी नाउ प्रेजेंट भजन बाय आवर आर्टिस्ट संगीता दत्ता। Listen now to Bhajan. Our artist is Sangeeta Datta. You are listening to Bhajan. Our artist is Sangeeta Datta.

0: अभी आप हिंदुस्तानी भक्ति संगीत कार्यक्रम के तहत संगीता दत्ता से भजन सुन रहे थे। हिंदुस्तानी भक्ति संगीत के कार्यक्रम को जारी रखते हुए लीजिए प्रस्तुत है एक और भजन। कलाकार हैं शौबरी राय, तो लीजिए प्रस्तुत है शौबरी राय से भजन।
1: यू वर लिसनिंग टू भजन। आवर आर्टिस्ट वॉज संगीता दत्ता। This is Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music. We now present Bhajan by our artist Shobori Roy. Listen now to Bhajan. Our artist is Shobori Roy. You are listening to Bhajan. Our artist is Shobori Roy.

0: हिंदुस्तानी भक्ति संगीत कार्यक्रम के तहत अभी आप शबरी राय से भजन सुन रहे थे। हिंदुस्तानी भक्ति संगीत कार्यक्रम को जारी रखते हुए लीजिए अभी प्रस्तुत है श्यामा संगीत। कलाकार हैं आल्पना मुखोपाध्याय। तो लीजिए प्रस्तुत है आल्पना मुखोपाध्याय से श्यामा संगीत।
1: यू आर लिस्निंग टू भजन। आवर आर्टिस्ट वॉज शबरी रॉय। दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक। Continuing the program, we now present Shyama Sangeet. Listen now to Shyama Sangeet. Our artist is Alpona Mukhopadhyay. You are listening to Shyama Sangeet. Our artist is Alpona Mukhopadhyay.